मूर्ख लोग अजान, कहो नानक बिन हर भजन बिरथा जन्म सिरान। मूर्ख बंदा माया दी खातर दिन रात नठिया फिरदा है, बई तू संगत विच नहीं आंदा जी, मेरा कारोबार इन्ना है मेरे कोल टाइम ही नहीं होता, मेरा काम इन्ना है। ओए पलिया, जदों भुख नाल मरदा सी उदों तेनू गुरु चेते सी, उदों ते दोनों वक्त गुरु घर आके अरदासां करदा सी। हुण तेरा कारोबार वध गया, दात प्यारी विसरिया दतारा, देण वाला भुल गया, हुण तेरे कोल गुरु लई टाइम ही नहीं हुंदा। सतगुरु बाणी विच समझांदे ने, माया कारण ता भी मूर्ख लोग अजान, यह मूर्खां दा काम है। सुख आंदियां भी देर नहीं लगती, जांदियां भी देर नहीं लगती। जे तेनू गुरु ने तन दिता है, कारोबार बता दिता है, सगों होर गुरु दा धन्नवाद कर। क्यों अपना जीवन बिगाड़ रहा है? एक बार श्री रामचंद्र जी दरबार में बैठे सन, की तक रहे ने, एक कीड़ा दीवार ते चढ़ता है फिर थले डिग जाता है, इहदे वल देखी जाते ने, दीवार ते चढ़ता है फिर नीचे गिर जाता है। रामचंद्र जी इहदे वल तकी जाते ने ते फिर देख के ना हसण लग पए। कोल ऋषि मुनि बैठे सन, आखण लगे ऐ की गल है, क्यों हसदे हो? आ देखो बई, कीड़ा दीवार ते चढ़दा है डिग जांदा है, बई इहदे विच हसण वाली केड़ी गल है? ये ते हसण वाली कोई गल नहीं। श्री रामचंद्र जी आखण लगे, हसण वाली गल यह है, इस जीवन तो पहला ना ए, एक राजा होंदा सी, दुनिया ते इहदा राज सी, बड़ा बड़ा राजा सी, इंद्र जिसका नाम सी। इन्हे सिमरन नहीं कीता, दिन रात पाप कीते, ते हुण ये 84 लख जून दे विच पिया होया है, कीड़े दी जूनी विच पिया है, ते मैं हसदा ता हां, ऐ पलिया तेनू तन भी दिता, सोने महल भी दिते, घोड़े गड्डियां भी दिते, तू निरंकार नू फिर भी चेते नहीं रखिया, ते हुण देख ला किहड़े दुखां विच फसिया होया है। जे साडे कोल सुख चंगे ने ना, ते प्रभु नू भुलाणा नहीं चाहीदा, सगों ज्यादा धन्नवाद करना चाहीदा है। नहीं ते जिहड़ा आण वाला जीवन है ना, दुनिया विच ते दुख पाना ही पाना है। जिहड़े सिमरन नहीं करदे, दुनिया विच भी दुख पांदे ने, घर दे कलेशां दे विच लड़ाइयां झगड़ियां विच फसे रहिंदे ने, ते जिहड़ा अगला जीवन हुंदा है ओह भी खराब कर लैंदे ने, 84 लख जून दे गेड़ विच फस जांदे ने। नहीं बई, जे तेनू मालक ने सुख दिते ने ना, इन्हां सुखां दा आनंद भी माण, ते गुरु नू भी चित रख। गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे, नीत नीत घर बांधीए जे रहना होवे, बहुता कुछ उत्थे बणाईदा है जिथे पक्के रहना होवे, इत्थे तो पक्के नहीं रहना, एक ना एक दिन चला जाना है। जात मार, रिश्तेदारां वल, दोस्तां मित्रां वल, पिंड नगर वल किन्ने चले गए ने, ते तू किन्ना चिर बैठा रहेगा? फरीदा, किथे तेंडे मापिया, भई किथे ने तेरे मापे जिन्हां ने तेनू जन्म दिता सी? वो तेरे तो लद गए ने, चले गए ने, इसे तरह एक ना एक दिन तू भी चले जाना है। जो सुख को चाहे सदा,
ਸ਼ਰਨ ਰਾਮ ਕੀ ਲਹਿ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨਰੇ ਮਨਾ ਦੁਰਲਭ ਮਾਨੁਖ ਦੇ, ਜੇ ਸੁਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਵਾਸ ਸਫਲੇ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਤੈਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਵਾਰ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਨਹੀਂ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇਗਾ ਫਿਰ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਲੋਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ 9ਵੇਂ ਮਹਿਲੇ ਦੇ ਸਲੋਕ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਵੀ ਸਵਾਸ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਜਾਈ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੀ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਾਰ ਤੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਸਵੇਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰ। ਦਿਨ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2.5-3 ਘੰਟੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰ। ਬੈਠਿਆ ਕਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਸਵਾਸ ਸਫਲੇ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀਂ ਜਨਮ ਅਕਾਰਥ ਕੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਨੀ, ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਜਨਮ ਵਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਗਵਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਆਖ ਰਹੇ।

मैं ता कालू जी राय बुलार दे पटवारी सन। आख्या मेहता जी आपनू राय जी याद करते हैं, उस बन विच बैठे हन ब्रिक हेठा जिथे गुरु नानक दे दर्शन कीते सन। उन्हें मेहता जी आए, राय जी ने आउंदे ही पूछया, मेहता जी कोई गुरु नानक दा सुख स्नेहा आया? मेहता कालू जी कहन लगे कोई नहीं आया, 12 साल बीत गए कोई स्नेहा नहीं आया। आख्या मैं ता उस वेले नू कोसदा हां, राय जी मैं अपने हाथ वाल वेख के अपने हाथ नू शराप देंदा हां कि तू सुख के पीला क्यों ना हो गया, क्योंकि मैं ही सां जिसने 20 रुपया दे पिछे गुरु नानक दे मुंह ते चपेड़ मारी सी। राय जी जापद गुरु नानक हुण नहीं आवेगा। आख्या इवें ना आखो, तू बेबे नानकी जी नू खबर भेज। मेहता कालू ने आख्या बेबे नानकी नू खबर भेजी है सुल्तानपुरी, जापद वो भी इथे आवेगी, क्योंकि घर की हालत तो बहुत खराब है, 12 साल हो गए हन गुरु नानक नू घरों गया, घर तो घर नहीं है खंडर बन चुके, क्योंकि जिस घर का चिराग 12 साल हो गए हो बार होवे, जिस माता का इको एक बच्चा इको एक लाल होवे ते ओ भी 12 साल हो गए होन गया होवे करो ते कोई सुख स्नेहा ना होवे, उस मां का की हाल होवे। इथे माता त्रिपता ने रो रो के अपनिया अखां गवा दित्तियां कि हे नानक कदों आवेगा, कदों आके अपनी सोहनी आवाज मेरे कन्ना विच पावेगा। इथे माता तृप्ता अरदास कर रही है, बेनती कर रही है कदों आवेगा बेटा, असी तेनू पछाणिया नहीं, बेबे नानकी ने तेनू पछाणिया कि तू रब है।

उस पूर्ण ज्योत करके मंडली ते गल साडी समझ आ जाएगी। क्योंकि इथो आवाज आउंदी भगत कबीर जी दा एक शब्द जिस अंदर ओ ये आवाज दे रहे ने, आओ उस आवाज नूं आपां

This is what we have done. ऐसे कीता है. स्वाद, सेंसुअल प्लेजर्स, बाद लड़ाई झगड़ा, माए बाप पूत हित प्राता, कहते हैं किसी ही बात कहात किसी ही पे सगले लर लर मुआ बाद बाद विवाद. हरेक दे जीवन च बाद विवाद है, हरेक दे जीवन च बाद विवाद, किसे दी किसे नाल नहीं बनती, किसे दी किसे नाल नहीं बनती, किसे दी पुत्र नाल नहीं बनती, किसे दी धी नाल नहीं बनती, किसे दी सहुरे नाल नहीं बनती, किसे दी सस नाल नहीं बनती, किसे दी पति नाल नहीं बनती, किसे दी पत्नी नाल नहीं बनती, किसे दी किसे नाल नहीं बनती. बाद साढ़े जीवन च बाद बहुत, झगड़ा बहुत, माए बाप पूत हित प्राता उन कर कर मिलो दुआ, किसी ही वाद काट किसी ही पै सगले लर लर मूह, किसे दे थोड़ा जा काट किसे दे थोड़ा जा वद, सारे केंदे लड़ लड़ के मर रहे हन. इस चीज च ए रतन जन्म जिहड़ा गवाया गया, मिलिया किसी होर कारज दे वास्ते. स्वाद बाद ईरख, फिर ईरखा है, ईरखा मद माया अते माया दे नशे दे विच, मद दे विच, स्वाद बाद ईरख मद माया इन संग लाग रतन जन्म गवाया. इना चीजां दे नाल लग के रतन जन्म गवा दिता. तेनू इस वास्ते दिता सी, तेनू इस वास्ते ए प्राप्त होया सी. प्राप्त इस करके होया सी कि भई प्राप्त मानुख दे हुरिया, गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया. यही तेरा एक मौका सी गोविंद नू मिलन दा, गोविंद नू मिलन दा. उस नू मिलन दी ये जो वारी सी, ये तू एना चीजां दे विच ही चुकाती है, एना चीजां दे विच ही वेस्ट करती है. तो फिर महापुरुष ताड़ना नाल भी आखदे हन के अंधले क्या पाया जागाए, कहंदे हन ए शरीरा मेरिया इस जग में आए के क्या तुद कर्म कमाया, तू की कम कीता है. बाणी च फरमाया है कि असी किस तरह अपना जीवन गवाने. ये तेतों हिसाब, तेतों ए सवाल, ये तेतों लेखा पुछया जाना है. कहंदे हन

मंदिर अंदर गाली नहीं दिती जा सकती, इस मंदिर दे नाल भी गाली नहीं दिती जा सकती। जो वस्तुआं इस मंदिर च नहीं लिया जा सकदियां वो वस्तुआं इस मंदिर च भी नहीं पाईया जा सकदियां। इस मंदिर का तिरस्कार नहीं किया जा सकता, निरादरी नहीं की जा सकती, इस मंदिर नूं भी अब्यूज नहीं किया जा सकता, इस दे लई भी डिसरिस्पेक्टफुल नहीं होया जा सकता। अगला नुक्ता सी, जो सारे ब्रह्मंड दे विच है, सारे यूनिवर्स दे विच है, जो कुदरत दी कला अकल कला भरपूर रहे, सारा जगत सारी रचना वाहगुरु की अकल इंटेलीजेंस एंड कला आर्ट, इंटेलीजेंस एंड आर्ट दे नाल सारी जितनी भी रचना है भरी पई है। कहिंदे उह सारी दी सारी इंटेलीजेंस एंड आर्ट तुहाडे इस शरीर दे विच है, जो खोजे सो पावे, जो उस नूं खोजेगा सो पा लेगा। अगला नुक्ता सी कि एक घोड़ी है, शरीर घोड़ी है और तुसी इस दे सवार हो, पर हुण चक्कर उल्टा हो चुका है, जो घोड़ी है वो सवार दे उत्ते सवार होई पई है, उस सवार दा आखा नहीं मनदी है। कहिंदे इस दे उत्ते सवार होवो भाव, इस दे उत्ते मास्टरी अचीव करो, इस दे स्लेव ना बनो। जदों सानू एडिक्शंस हो जांदियां हन उदों असी बॉडी दे स्लेव हो जांदे हां, कहिंदे इस दे स्लेव ना होवो। अगला नुक्ता जो कल छेवां आख्या सी कि इह श्रेष्ठ है, सब तो उत्तम है, बाकी सारियां जूनियां तो कहिंदे पानी भरवाया जा सकता है, इह सब तो ज्यादा उत्तम है। अज दे कीर्तन दा अखीरला नुक्ता, सतवां नुक्ता, गुरु बाबा जी आखदे ने इह सरोवर है। असीं अगे कदे सुनिया भी शरीर सरोवर है, असीं यही सुनिया भी गुरुद्वारियां दे नाल सरोवर हुंदे हन, उन्हां सरोवरां च जाके इशनान करीदा। पर कितने एक लोग हन जो सच बोलन, जिन्हां नूं यह पता होएगा कि शरीर भी सरोवर है, और महाराज जी ने बाणी च जदों भी सरोवर आख्या है तो शरीर नूं आख्या है, शरीर एक सरोवर है और इस सरोवर दे अंदर तुसी इशनान करना है, और इस सरोवर दे अंदर इशनान करन दे नाल सारी मैल धुबनी है। शरीर की है सरोवर है, शरीर की है सरोवर है। आओ हुण बाणी दी पंक्ति सुनावा जिथे बाणी आखदी है कि इह सरोवर है। कहिंदे हन

जगी और न यहे महात्म में अवतारी उजागिर यान कियो तिनके दुख कोटिक दूर गे मथुरा में।

सुन बेद बिरंत विचार रहो हर जप न छाडो एक करी। मथुरा गण को प्रभ दीन दयाल है संगत श्री।

अपने आप साजियन आपे ही दम खलोवा आपे पट्टी कलमिया आप लिखन हारा हुआ सब उमत

संतों की तरियोरे आदि पुरख पर तख लिखो अक्षर मत कितरे प्रगत ज्योत जग मगे तेज पूमंडल छायो परस परस परस परस गुरु।

भगत नामदेव जी इस शब्द दे विच जिस थीम नू असीं अज आरंभ करना है, जिस विचार दी लड़ी आरंभ करनी है, वो है नाम। ते भगत नामदेव जी अपने जीवन का जो निचोड़ है वो दस रहे हैं, ताकि सानू भगत जी के इन शब्दों के द्वारा कोई डायरेक्शन मिल सके, कोई समझ प्राप्त हो सके। कहते हैं, मैं अंधलहे की टेक, तेरा नाम खुंदकारा। मैं अन्ना हां, अंधा हां, तेरे नाम की स्टिक जो है, तेरे नाम की जो छड़ी है, वो मेरा आसरा। पाप के तेरे नाम की मेनू सपोर्ट है, तेरा नाम मेरा सहारा। पाप के तेरे नाम तो बिना, तेरे नाम की छड़ी हाथ च होने तो बिना मैं एक कदम भी चल नहीं सकता। जीवन दे विच अत्यंत खड्डे हन, टोए हन, उतराव चढ़ाव हन, उन्हां दे विच जद तक तेरे नाम की छड़ी मेरे हाथ विच है, ओ मेरा अंधले दा आसरा। तेरा नाम खुंदकारा। फिर आखते हैं, मैं गरीब, मैं कुछ नहीं हूं, मैं मस्कीन, बिल्कुल जो खाली हो, जिसके पास कुछ ना हो। पर कहते हैं, ऐसा भी नहीं कि मैं बिल्कुल ही गरीब हां, क्योंकि तेरा नाम है आधारा, तेरा नाम मेरा आधार है। तेरे नाम तो बिना मैं अपने आप नूं गरीब और मस्कीन समझांगा, पर जब तेरा नाम मेरे पास है फिर मैं गरीब नहीं रह जांदा, क्योंकि गुरु महाराज जी अपनी बाणी च आखदे हन

सब तो ज्यादा उच्ची थान रखने वाला पदार्थ जो सब्सटेंस है, जो टेक्निक है, वे है, मेथड है, महाराज जी कहते वो नाम है। कलयुग नाम प्रधान पदार्थ, भगत जना उधरे, जिस दे नाल भगत जना दा उधार हो जाता है। गुरु महाराज जी आखते हैं सारा संसार रोगी है, सारे संसार जैसे भी आ जाए, वी ऑल आर सिक, सारा संसार जो रोगी है तो वी आर नॉट एग्जेम्प्टेड, असि भी रोगी, हमें रोग मानुख को दीना, हमें दा रोग है। गुरु महाराज जी आखते नानक दे घर दे विच अगर इस रोग की कोई दवाई है, सारा संसार रोगी है, अते रोग की अगर कोई दवाई है, संसार रोगी नाम दारू, कहिंदे सारा संसार रोगी है तो सिर्फ नाम ही एक दारू है, नाम ही एक इलाज है और कोई भी इलाज नहीं है।

दुख, पेन, सफरिंग, मिजरी, ये तो कहते जहर है लाइफ की, पॉइजन है। दुख मोहरा, मोहरा मैंने पॉइजन, जितने भी साड़ी लाइफ पेन है, मिजरी है, दर्द है, सफरिंग है, वो कहते एक जहर है। हुण उस जहर का इलाज की है, मारण लफज वरत्या है। मारण का मतलब हुंदा मसाले पाके दवाई जो तैयार की जाए, अर्ब्स वगैरह पाके जो दवाई तैयार की जाए, कहते उस मारण आके। अगर पेन एंड सफरिंग लाइफ के पॉइजन है तो उस पॉइजन केड़ी चीज मार सकती है? बहुत ज्यादा ध्यान दो, ट्राई टू बी फोकस्ड। दुख मोहरा, दुख जहर है, उस जहर नू मारन दे वास्ते ए बड़िया इनकरेजिंग लाइन्स हन। इन द सेंस कि जिस किसे इंसान की जिंदगी अत दुख है, सफरिंग है, मिजरीज हन, उदे वास्ते एक सोल्यूशन दसया जा रहा है, एक वे आउट है, एक होपलेसनेस सिचुएशन दे विच एक होप दिखाई जा रही है। कि तुहानू वरीड होने की लोड़ नहीं, चिंता करने की लोड़ नहीं। अगर जिंदगी च पॉइजन आ गई है, दुख दर्द परेशानियां आ गई हैं, तो महाराज जी आखदे ने मारण, मारण का मतलब मसाले पाके कीती हुई तैयार दवाई, जड़ी दवाई है उस जहर नू मुका सकती है। कहते हैं वो है हर नाम, वाहगुरु का नाम। दुख महारा मारण हर नाम, दुख नू मारण वाला, शक्ति रखण वाला एक ही पदार्थ है, वाहगुरु का नाम। सो नानक के कारण सारे बोलो केवल नाम। इस पंक्ति नू याद करना है, वी विल गो ऑन रिपीटिंग दिस लाइन एवरी डे। नानक के कारण केवल नाम। तो मैं तो बात बोल रहा करो, कितने नाल कोई आप दिन थकावट नहीं हो जाएगी। नानक के कारण दुनिया दे विच बहुत ज्यादा इग्नोरेंस है, बहुत ज्यादा डार्कनेस है, न समझी है, अज्ञानता है। तो महाराज जी ने पूछिए, महाराज इतनी अज्ञानता है, इतनी नासमझी है, इतना अंधेरा है, तो आप जी दे कोल की इंतजाम है इस अंधेरे नू दूर करन दा, चानन जगान दा? तो गुरु महाराज जी आखदे हैं

0: जी ने पूछिए महाराज धर्म दे विच पूजा दा बड़ा स्थान है पूजा धूप बत्ती बालो जल छिड़को फुल लियाओ तलियां बजाओ शंख बजाओ बहुत किस्म दे नाल लोग पूजा करते हैं वर्शिप करते हैं आप जी की सुजेस्ट करते हो पूजा किमें की जानी चाहिए महाराज जी आखते हैं साडे घर दे विच नाम ही पूजा है और कोई पूजा नहीं नाम जपना ही पूजा है ए बाबा जी का जो नाम दे प्रति विचार आप जी सुना रहे हैं कहते हैं
1: पूजा कीचे नाम त्याइए
0: नाम नु त्याना ही पूजा करना है जो नाम नहीं त्यौंदा बाकी रिचुअल्स करी जाता है वो बाहर बाहर है बाहर बाहर वो पूजा नहीं पूजा उदो होंदी है जदों किसी का नाम दिल च वस जाए वो पूजा होंदी है कहते हैं साढ़े घर के पूजा भी नाम जपना ही है और कोई पूजा नहीं है कितना सिंपल है।

नाम जपण तो बिना कोई पूजा नहीं हो सकती। सो इतना सानू समझ लेना चाहिए और समझ के अपनी डायरेक्शन भी मोड़ लेनी चाहिए है। मेरा सुनना ही नहीं चाहिए, अमल भी करना चाहिए। अगर असी नाम जप रहे हैं तो समझ लो असी पूजा कर रहे हैं। अगर असी रोजाना नाम नहीं जपते तो कोई पूजा नहीं कर रहे। बाबा जी अगले पूजा कीचे नाम से आइए बिन नावे पूज ना हो। महाराज जी आप जी का तीर्थां के संबंध की ख्याल है? स्पिरिचुअल क्वेस्ट दे विच इनलाइटनमेंट अटेन करने दे वास्ते, दुखां दा छुटकारा पाने दे वास्ते लोग तीर्थां ते जांदे हन, पिलग्रिमेजेस ते जांदे हन, जिन्हां नूं होली प्लेसेस आख्या जांदा है। इस देर सच है। महाराज जी आखदे हन साडे वास्ते नाम जपना ही तीर्थ ते जाना है, क्योंकि जो नाम जपेगा वो खुद ही तीर्थ बन जाएगा, खुद ही तीर्थ बन जाएगा। तो साडे वास्ते तीर्थ ते जाना भी नाम जपना ही। कहंदे हन तीर्थ नावण जाओ, तीर्थ नाम है, तीर्थ भी नाम है।

गुरु महाराज ये दसो कि बहुत लोग वेद शास्त्र सिमृतियां ये लिटरेचर पढ़ते हैं क्योंकि तो असि भी वेद शास्त्र प्राण सिमृतियां आदि पढ़िए। महाराज जी आखते नहीं साडे वास्ते नाम जपना ही वेद पढ़ना, नाम जपना ही साडे वास्ते वेद और शास्त्र है। कहते हैं नाम हमारे वेद अर नाद, फिर ये गारंटी करते हैं कि नाम जपन के नाल साडे ऐस लोक दे भी परलोक दे भी सारे कार्य पूरे हो जाते हैं।

ट्राई टू रिमेंबर दिस लाइन, नाम हमारे गुरु की से, क्योंकि तो गुरु की सेवा दे वास्ते बहुत ही कॉन्शियसनेस लेवल जो है वो इवॉल्व होना चाहिए, नहीं तो इंसान थां थां थां थां से सेवा करने की बजाय बेअदबी करी जाएगा, गुस्ताखी करी जाएगा और सेवा करने के नाल हौमे वधाई जाएगा। पर नाम है जो उसकी आत्मक अवस्था नू उच्चिया उठाएगा, हंकार नू मिटेगा, अते उस दे विच ही सिर्फ गुरु की खुशी है, और किसी गल च गुरु की खुशी नहीं। हुण तक आप जी ने यह सुनया है, भगत नामदेव जी आखते हैं नाम मैं अंधा हां, जीवन दे रस्ते उत्ते जे नाम की छड़ी मेरे हाथ विच नहीं है तो मैं चल नहीं सकता, किते पहुंच नहीं सकता। नाम कहने मेरे जीवन का आधार। गुरु बाबा नानक देव जी महाराज दे बाणी दे विचों जो मैं प्रमाण दिते हैं ओ ये कहते हैं कि नाम ही नाम है साढ़े घर दे विच, नानक के घर भूल गए केवल नाम, नानक के घर केवल नाम, कहते साढ़े घर सिर्फ केवल नाम है और कुछ नहीं, नानक के घर केवल नाम, नानक दे घर दे विच सुप्रीम टेक्निक जो है, मेथड जो है, वे जो है वो सिर्फ नाम है और कुछ नहीं है। कलयुग नाम प्रधान पदार्थ, भगत जी ना उधरे, सारा संसार रोगी है, उसका एक ही दारू है, एक ही इलाज है, वो की है नाम। संसार दे विच बहुत इग्नोरेंस है, अंधेरा है, तो दीवा की है नाम। लोग अत्यंत लोग तीर्थां ते तुरे फिरदे हन, गुरु जी महाराज कहते हैं तीर्थ भी नाम ही है, नाम जपना ही तीर्थ स्नान है, नाम जपना ही तीर्थ स्नान है। कहते नाम ही साढ़े वास्ते वेद शास्त्र है, नाम ही साढ़े वास्ते, नाम जपना ही रब की पूजा है, अते नाम जपना ही गुरु की सेवा है। सो यह है नाम की इंपॉर्टेंस, समा समाप्त है। आज सिर्फ उस विचार नू साढ़े आठ तक आते सो हुण तक असा यह सुनया है कीर्तन का पहला हिस्सा कि गुरु बाबा जी के घर दे विच केवल नाम है, नाम ही दवाई है, नाम ही दीवा है, नाम ही तीर्थ है, नाम ही पूजा है, नाम जपना ही सेवा है। तो आओ प्यार नाल एक दफा उस पंक्ति नूं हुण गाइए, मैं अंधले की टेक तेरा नाम खुंदकारा, मैं अंधले की टेक छड़ी सोटी, कहिंदे ओ वाहिगुरु तेरा नाम है उस तो बिना मैं चल नहीं सकता, अते जो वाहिगुरु दे उस नाम की छड़ी तो बिना चलने की कोशिश करते हैं वह गिटे गोडे जरूर तोड़ाणगे, गिरणगे, चोटा खाणगे। सो आओ वाहिगुरु जी दे नाम नू अपना आसरा बनाइए, समझिए, गाइए, फिर कीर्तन का थोड़ा जा अगला हिस्सा मैं आपकी सेवा रखांगा।

अपने मन वृत्तियों नु जोड़ के फोकस करके रखो और उस सारी की सारी विचार नु अपने अंदर टिका के रखो जो सुने। इतना कुछ सुनने तो बाद नानक के कर केवल नाम, नाम ही तीर्थ, नाम ही पूजा है, नाम ही रोगा नु खत्म करने वाली दवाई है, नाम ही जो दुख मिजरी सफरिंग जहर हैं साड़ी जिंदगी उन्हों का इलाज है, नाम ही तीर्थ है, नाम ही गुरु की सेवा है। इस तो बाद जो ट्रूली एक सीकर है उसके मन दे विच ये जो एक अजीब मिस्टीरियस वंडरफुल मिराकुलस इनवैल्यूएबल वस्तु है नाम, उसनु प्राप्त करन दी इच्छा जागती कि किवें मैनू प्राप्त हो, जो कि तमाम चीजां दा इलाज है, किवें मैनू प्राप्त हो। उस दे वास्ते इंसान दे अंदर कितनी लॉन्गिंग चाहिदी है, कितनी बर्निंग डिजायर चाहिदी है, कितनी तीव्र इच्छा चाहिदी है। जे इच्छा नहीं है, जो तड़प नहीं है, तो फिर वो वस्तु मिल नहीं सकती। गुरु महाराज जी का एक शब्द है, श्लोक है, जिस दे विच गुरु महाराज जी आखते हैं मेरी जो मैं सीकर हां नाम दा, अते मेरी सीकिंग दे विच जो इंटेंसिटी है उसनु देखो कितनी है, वो इतनी है कि जितनी देर तक वो नाम ना मिल जाए वो रज ही नहीं सकती, वो सेटल हो ही नहीं सकती, उसनु चैन आ ही नहीं सकता, वो टिक नहीं सकती। कहते हैं जिस तरह मिसाल उन्होंने तीन चार बहुत खूबसूरत दिखाई हैं, कहते हैं

मित्र हुंदा ही होए जिहड़ा मनुख दा भला लोचे, जिहड़ा मित्र मिले ते बुरे पासे लै जा, भला फिर होर दुश्मन दी की लोड़। जिहड़ा अखौती मित्र मिले, मित्रता दे नां थले बुरे पासे लै तुरे, बुराइयां वाले पासे प्रेर लै जा, गलत कम्मां वाले पासे लै तुरे, या जेड़े मित्र दे आया जीवन दा कीमती समा आ जाई तुरिया चला जा, गलत गल्लां विच, निंदा चुगली विच, गलत खेडां विच, गलत कारियां विच मनुख दा कर्म भ्रिष्ट हुंदा चला जावे, वो मित्र नहीं दुश्मन है। क्योंकि जो कर्म असी करने ने उन दा फल साडे सामने होणा, अज नहीं कल नूं, ऐस नहीं अगले जन्म नूं, साडे कीते कर्म साडे सामने आ जाणे।

गुरुमुख जपिए लाए ध्याना। एक कीर्तन करना है, एक कीर्तन जपना है। जब कीर्तन कर रही हो तो दूसरा सुने एक कीर्तन करना है, पर कीर्तन कर दिया नाल नाल खुद सुन रहे है एक कीर्तन जपना है। कलयुग देच इस समय ईश्वर प्राप्ति का यह मुख्य साधन है, प्रधान साधन है। कलयुग में कीर्तन प्रधाना, गुरमुख जपिए लाए ध्याना। अगर ध्यान लाके सुनना हो जाए तो कीर्तन जपना होता है। कीर्तन का करना, कीर्तन का रूप बनना नहीं है, पर कीर्तन का जपना कीर्तन का रूप ही हो जाना है। और जिस दी कीर्ति है मनुख उस दे स्वभाव नु प्राप्त कर लेंदा है, उस दे गुणा नु प्राप्त कर लेंदा है। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने योग साधना नहीं साधी, वर्त दे च विश्वास नहीं रखिया, तीर्थां दे इशनान नु कोई महानता नहीं दित्ती, आपने सिर्फ कीर्तन कीता है और इतने प्राणा नाल कीता है, इतनी एकाग्रता नाल कीता है, कीर्तन जप बन गया, कीर्तन तप बन गया, कीर्तन बंदगी बन गया, कीर्तन ही परमात्मा दा रूप बन गया। भाई साहब भाई अरविंदर पाल सिंगुणा ने सतगुरां दी इस बाणी नू बड़े मनोहर अंदाज देच गायन कीता है। सतगुरु बख्शिश करन ए गायन कीती होई गुरवाणी इस विच ध्यान जुड़े और ए कीर्तन जप बन जाए। कीर्तन जप बनदा है, जप करन वाला प्रभु।

सिर्फ खुराक है। बिना शस्त्र जे आप केस धरे हुए होण ते शस्त्र ना होवे ते गुरु गोबिंद सिंह कहिंदे सिखो भेड़ बकरी तो वध तुसी कुछ नहीं। इसलिए तुहानू भेड़ बकरियां नहीं मैं बनाया, मैं तुहानू सिंह बनाया शेर। और शेर पता कौन हुंदा है? शेर मैदान जंग विच उत्तों छाल मार के आउंदा, छाल मार के। मैं तुहानू दसदा दिल्ली गुरुद्वारा शीशगंज साड़न लई 12,000 की टोली आई, 12,000 की। 4,000 ते आया इधर फतेहपुरी वालों, ते 4,000 आया लाल किले वालों, ते 4,000 सामने उस स्टेशन वालों आया। ते जेड़े सी ना उन्होंने खिलाड़े हुए बंदूक लैके वो भज गए, जेड़े दुष्टों की फौज सी वह भज गई। ते दो चार साढ़े सिख बेचारे लागे कोतवाली, उन्होंने पिस्तौल तो उन्होंने रात ही खोले से डंडे इन्होंने हाथ फड़ाते से, वह डंडे लैके शीशगंज अंदर आन बड़े। असं डे सा कीर्तन कर बाबे ने साडे राम जपो जी ऐसे ऐसे हां जी, ये राम ही डे सी जपण। उन्हें सिखा आ कहा भाई खालसा जी हुण राम जपना छड़ो ते खंडे खड़काओ, 5 मिंट तुसी होर चुप कीते रहे ते तुहानू इन्हां ने उत्ते ही आण के फड़ के जीवंदे साड़ देना, तीआं तुहाडीआं खिच के लै जाणियां, आ गोलकां गलकां लुट के गुरु साहब की बेदबी हो जानी। 5 मिंट केवल रहिंदे, जे कुछ कर सकते तो कर लो। यह साढ़े सिंह साहब बहादुर महाराज ने नमस्कार बख्शन, गुरु गोबिंद सिंह साहब ने थापी दिती। और इन्हां कोल शस्त्र सी जिहड़ा सानू बाबा महाराज बाबा जरनैल सिंह जी ने कीर्तन च भेटा दिता सी। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज, गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज ने प्यारे खालसा जी, मेरी बेनती सुन लो, मेरी बेनती सुन लो। मैं गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज ने थापी दिती, इन्हों के अंदर वास किया और शस्त्र कढ़िया, 3-4 सिंह होर सी वो इन्हों के नाल हो गए। और इन्होंने छाल मार के बबर शेर जिमें बबर शेर के नजारे उठे मैं वेखे। गुरु गोबिंद सिंह की बाणी में पढ़ता हूं, पाप समूह बिलासन को कल की अवतार कहावेंगे, तुरकच्छ तुरंग सुपच्छ बटो करकार कृपाण कम पावेंगे, निक्षे जिम केवर परबत्ते तब दिवाले पावेंगे, पल पाल पया संभल के हरजू हर मंदिर आवेंगे। ओ मैं सुनिया निक्षे जिम केर परबत्ते, केर का मतलब बब्बर शेर है। बब्बर शेर जो भुखा हुंदा है वह जो फिर परबत तो पवक मार के छाल मार के जो मैदान च आउंदा है उन्हें फिर जो है ना वह पता की लिखे वह जो आप पढ़ते हैं गुरु नानक साहब का, हां जी सतगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी धुंध जग चानण होवा, ज्यो कर सूरज निकलिया तारे छपे अंधेर पलोवा। अगे की है सिंह बुके, सिंह फिर गजे ते की होया मिर्गावली पन्नी जाए, मिर्गावली पन्नी जाए ना तीर पर हुआ। ए बाबे का छाल मार गया शीशा के पौड़िया तो तलवार इतने फल ली ते जकारे छड़ दे पज पे पज के वह 5-7 पिछे बेचारे मेरे वर्गे वह भी मगन मगन भजे आने। जो उन्हें वेख्या दुष्टा तो ये ते आ गए, तलवार इतने रखी बाबे जरनैल सिंह वाली, ਉਹ 4,000 ਜਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਫਤਿਹਪੁਰੀ ਵਾਲਾ ਭੱਜ ਉੱਠਾ, 10-15 ਦੰਦ ਟੁੱਟ ਗਏ, 50-70 ਗੋਡੇ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਹੈਂਜੀ ਜਦੋਂ ਭੱਜ ਉੱਠੇ ਨਾਲੇ ਐ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਭੱਜਣ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹਾਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਭੱਜਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਭੱਜਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਓ ਦੇ ਪੁੱਤ ਖਲੋ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵੱਲ ਭੱਜ ਉੱਠੇ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਭੱਜ ਉੱਠੇ। ਹੈਂਜੀ 12,000 ਦੁਸ਼ਟ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ। ਲਓ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, 4ਵੇਂ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਾ ਰੱਜ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਸ਼ਰਵਣ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਛੰਦਰੀ

कारण पोथियां नाम बिना सब कूड़ गाली होशी ते असी किवें बेखबर फिर रहे हां सब कुछ सुन के भी ए अखर कदे मन विच वसाण दा जतन नहीं करदे चार पुकारे ना तू माने चार वेद भी पुकार पुकार ए सुमति दे रहे हन के ए मनुष्य तू नाम जपन लई संसार ते आए सेवा और सिमरन करन लई तैनू सोना मनुष्या जन्म प्राप्त होए हजूर दा बचन है चार पुकारे ना तू माने खट भी एका बात बखाने शे शास्त्र भी तैनू यही पुकार पुकार कह रहे हन पई इना अमोलक हीरे लाला तू महंगे श्वासा दे नाल नाम दे लाला दा वणज कर लै बई ते मुड़ के हथ नहीं आउणगे जिहड़ा जल नदी तो लंघ जांदा है ओ मुड़ के कदे नहीं आया करदा जिहड़ा दुध थणा तो बाहर आ जावे ओ मुड़ के नहीं जांदा इसलिए अमोलक श्वास जाई ना गवा चार पुकारे ना तू माने खट भी एका बात बखाने चार वेद भी तेनू पुकार दे रहे शे शास्त्र भी तेनू सुमति दे दे रहे फिर दस अस्ती मिल एको केहा दस ते अठ अठारह पुराण भी तेनू यही प्रेरणा देंदे हन भाई अमोलक श्वासा दे नाल सिमरन कर लै सेवा कर लै तेरा संसार ते आया सफल हो जावे धन गुरु अर्जन देव पातशाह कहंदे ने भाई फिर मुड़ के भी इस गल नूं विचार लै कि नाम बिना सब कूड़ गाली होशियां नाम तो बिना तेरे जितने कम हन ए होशे कम हन ए तेरे किसे कम आउन वाले कम नहीं इसलिए गुरु अर्जन देव पातशाह विसर नहीं आप कहंदे ने हे वाहे गुरु मैनू कदे भी तू विसर ना।

पीदा ऐसा निर्मल जल जो पीतिया शरीर अरोग हो जांदा ते किसे धरती दा ऐसा कठोर जल भी हुंदा है जो अरोग शरीर नू नित दा रोगी बना देंदा है। आख्या वही नाम दोहां दा ही जल है पर एक जल सुख रूप है एक दुख रूप है। ऐसे प्रकार संसार विच संगत भी दो प्रकार दी है। को संगत प्राप्त हो जाए तो जीवदिया ही नरक बना देंदी है। सत संगत प्राप्त हो जाए तो प्रभु दे नाल मिलाप करा देंदी है। इसलिए आप जल

मरण लिखाए मंडल में आए सबना मरना आया विछोड़ा सबना हर जो जन्मे है हर जो बने है हर जो उपजे है उस हर एक ने मरना ता है जित दिहाड़े तनवरी साहे लय लिखाए बाकी ये गल वखरी है ओ मौत जो आम लोकां वास्ते जिवें कबीर जी दा वचन सी जिहे मरणे सब जगत तरासिया जिस मौत ने लोकां दी मरण तो पहला ही जान कढ़ी मौत तां पता नहीं कदों आउणी मौत दे डर ने ही बंदे नूं मार रखे जीण नहीं पई देंदी जिहे मरणे सब जगत तरासिया सारा जगत तरा तरा कर रहा है जिस मौत जिहदा नां लैणा चंगा नहीं समझा जांदा चार बंदे बैठे होण कोई बंदा विच मौत दीआं गल्लां करन लग पवे कहिंदे ने कोई चंगी जी गल कर मौत दी गल माड़ी गल है मंदी गल है चंगी नहीं लगदी जीण दी गल कर मौत दी गल ना कर जिस नूं भाई मूले ने भाई मरदाने दे उस दो पैसिआं दे बदले मरना सच ते जीना झूठ ले के दिता सी जिस नूं गुरु नानक ने प्रवान कीता सी मरदानिआं कोई तां समझ वाला बैठा इत्थे सियालकोट विच जिहड़ा मरण नूं सच समझदा है और है भी सच जिंदगी दे बारे कई तरह दे शुभे हो सकते ने शक हो सकते ने शंके रह सकते गर्भ विच है जो इसका जन्म होवेगा जिंदगी इस नूं प्राप्त होवेगी कोई पक्की गल नहीं है शंके वाली गल है जिसका जन्म हो गया है इस नूं कुछ उमरां प्राप्त हो सकेगी शंके वाली गल है ये बोल सकेगा ये तुर सकेगा शंके वाली गल है डर बनिया रहिंदा है पता नहीं चल सके ना चल सके सारी क्रिया शरीर दी ठीक चले ना चले कल नूं पढ़ सकेगा के नहीं परिवार वाला बन सकेगा के नहीं कारोबार चल सकेगा के नहीं हर किस्म दे शंके हो सकणगे लेकिन एक गल परपक है हर एक जीव दे संबंध विच इह जिहड़ा जन्मे है मरेगा जरूर मौत ना टल सकेगी हर जीव ते आवेगी पर इस दे बावजूद भाई मूला तां कहिंदा सच है जो हर हालत च वापरना ही इह सच है ते जो नहीं रहना कल नूं जीवन ओह झूठ है फिर भी मनुख चाहुंदा है सच दी गल ना करो झूठ दी करो मरण दी गल ना करो जग मरण ना पाया नित आप लुकाया मत जम पकड़े लै जाए जियो मता किते जम आवे ते फड़ के लै जाए बंदा हमेशा हजार जतन करदा है मौत तों बच सकण दे ना कोई बचिया है ना किसे बच सकदा जो सच है जो वापरना है इस तों बंदा डरदा है कहिंदा इहदी गल ना करो जे मरणे सब जगत तरासिया कबीर जी कहिंदे ने मैनूं तां समझ ही आ गई है मरण विच भी एक आनंद है कबीर जिस मरणे ते जग डरे मेरा मन आनंद मरने ही ते पाई है पूर्ण परमानंद भावें मौत भी तीन तरह की कहिंदे ने शास्त्रकार कहिंदे ने एक तां मरना ओह हुंदा है जदों मनुख दा आत्मक जीवन शुरू ही ना हो आत्मक मौत बंदा मर जावे मरिया ही होवे एक तां ओह मौत है मैं कमाउंदा मर गया मैं इत्थे उड़ीकदा मर गया मरिया ही होया बंदा जीवन शुरू ही नहीं होया क्योंकि जीण दा चज नहीं आया एक ओह मौत हुंदी है जिहड़ी शरीर करके हो जाती लेकिन एक मौत होर भी ओह है मनुख दी हौं दी मौत मैं मेरी दी मौत जदों धर्म दे घर जन्म हुंदा है इस पासे दी मौत हो जाती हौं दी मौत हो जाती ते बंदा इस मौत तों भी डरदा जिस नूं इह मरना आ गया ना उहनूं धर्म दे मार्ग ते जीणा आ गया जिन्हों धर्म के मार्ग से जीना आ गया वह शरीर की मौत बड़ी छोटी समझता है बड़ी तुच्छ समझता है जिन्हों चज नाल जीना आ गया है सच्ची गल तो यह है कि चज नाल मरना भी उन्होंने आया कबीर जी कहते हैं सो मरना गुर शब्द प्रकाशया गुरु के शब्द द्वारा मैनू मरण का पता लग गया अब कैसे मरो मरण मन मानिया मरण से चित करता है हों करके मरण में चित करता है उंज भी जे मौत आवे जी आया मोए मरने का चाव है मरो ता हर के द्वार उधर जीवन शुरू हो जावे मर मर जाते जिन राम ना जाने मरदे ता ओ ने मरदे ही रहिंदे ने ओ जिउंदे भी मरदे ही रहिंदे ने जिन्हां नूं रब दा पता नहीं राम दा पता नहीं ईश्वर दा पता नहीं धर्म दा पता नहीं
मरनो मरन कहे सब कोई। हालांकि मरण दियां गल्लां बड़ियां हुंदियां ने, मरण दे संबंध च खोजां भी बड़ियां हुंदियां ने, मौत नूं टालण दे जतन भी बड़े हुंदे ने। मौत दी गल तां बड़ी है पर मरना वेखो जिसका इन्ना चर्चा है, जिहड़ी इन्नी सत चीज है, जिहड़ी हर हाल च वापरन वाली चीज है, मनुख इहदे बारे बड़ा ही अवेसल है, उहदे वास्ते कोई तैयारी नहीं। जिन्हां नूं मरना आया कबीर जी उन्हां दी गल करदे ने, सहजै मरै अमर होए सो। कुछ लोग ऐसे हुंदे ने शरीर करके मर के भी नहीं मरदे, उन्हां दा जीवन अनंत है, चलदा ही रहिंदा है, क्योंकि अनंत विच वाहिगुरू विच अभेद हो जांदे ने। उन्हां वास्ते मरना काहदा माड़ा है। महाराज धन गुरु नानक पातशाह वचन करदे ने।

कबीर जी कहते हैं ऐसा स्वाद है उस मरण विच। लोग मरण मरण की गल करते पर जेड़े सहजे मरते ने वो अमर होंगे, सहजे मरते ने शहीद, सहजे मरते ने जिन्हां नूं जीण दा चज, जीण दा भी स्वाद आया, जीवन का आनंद लैण वाले कई

हे परमात्मा, मैं तेरे दर दा भिखारी हां, मंगता हां। आरता मैंने मंगता, जिथे आरता दा अर्थ दुखी है उथे इसका अर्थ मंगता भी है। भगत तन्ना जी शब्द आरंभ करते हुए कहते ने, गोपाल गो मैंने पृथ्वी पाल, मैंने पालना करने वाला सर्वशक्तिवान श्री

से पाऊं जो तेरे रंग रात से स्वामी दिन का जन्म मर दुख नासा तेरी बख्श ना मिटे कोई सतगुरु का दिलासा जिस